0: मंत्र जंत्र कलमाए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के एक बार जिहड़े मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत जो

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंदबुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घरां च ऐ चलदा करदा कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर इह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कट्टण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्ने भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। जिहड़े लोग किंतू करते ने चौबी साहब से, समा आ जाएगा जब तुसी खुदे कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इसे प्रकार आईयो सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

सतगुरु कहिंदे कर हर माला टिंड परोलो। ध्यान दियो जी, जग दियां रूहां एकाग्रता बख्शियो। कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी, खूह आखो वाहिगुरु कर हर टर एक खूह बना। आ जिहड़े सवास ने तेरे इन्हां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना। महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शे, इस माल नूं जिहड़ा तूं आए नूं खिचे कौन। कहिंदे इस पीतर मन योग सरवण कीता, इस पीतर बलदा की जगह ते इन्हू खिचण नूं किनू जो मन जोड़ो, जो का मतलब जोड़ दो, जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते। ए खूह दियां माला टिंडा खिचण लई मन नूं बलद बनाओ। ते मन तां साडा सिमरन करदिआं वी दौड़दा रहिंदा है। साहिब कहिंदे ने तूं मन नूं जोड़ के इन्हां टिंडां नूं खिच, ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो, अमृत सिंचो, अमृत ते भरो क्यारे। बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे। जेडे खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया मट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे। खेती बाड़ी करते तुहानूं पता, पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले नूं पता क्यारे पा दी दे। साहब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे। ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछया, महाराज शरीर ते कहड़े क्यारे ने? आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम। खेतां विच ते क्यारे हुंदे, इत्थे क्यारे कहड़े? कहिंदे अखां नाम जपन वाले दिया अमृत ना भर दिंदियां, अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पैंदा। आखो सतनाम श्री पढ़ते नी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट, बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट। ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत वगन लग पैंदा। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पैंदा है। फिर आखिया महाराज होर केड़ा क्यारा भरीये? महाराज कहिंदे रसना अमृत नाल भर जांदी। गल करन लगदा वा ते कहिंदे फलाना बंदा भजन करदा मुंह चो अमृत डोलदा। नाम जपण वाले दी रसना कदी फिका नहीं बोलदी, नाम जपण वाले दी रसना सदा मिठा बोलदी अमृत वर्गा। साहिब कहिंदे ने मन नूं जो इस सवासां दी माला बना, मगर इह जे बरतना होया जे मन नूं तूं ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं, थल्यो अमृत आउणा नहीं। ओह इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई। मन नूं विच जोना जरूरी है। अमृत सिंचो भरो क्यारे। ते अगे लिखे तो मालीए ओह तो गज के बोलो ना तो

आदमी नहीं, खुदा भी नहीं है। रब की मर्यादा चलाने अपने पुत जिथे वाले ओदा तीर्थ किथों लभोगे। मगर मैं कहन लगा सा कुछ शिकारी ने ओ जिन्ने पंछी लै गया ओदे जोगे ही रह गए। अरदास करो ऐ बचन मेरे नाल पढ़ो कि संसार विच एक एक जीव दी अरदास होवे कोई जाना, कोई सेवक रब दा प्यारा आवे अमृत छकावे ते मैनू जोड़ आनंदपुर नाल दे, जोड़ गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल दे, जोड़ मैनू गुरु पंथ दी मर्यादा नाल दे। आपो अपनी गल ना दसे हर सेवक।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

शराब पी के घराड़े मार के सुवास ना खराब करा, मैं भैड़े कर्मा विच सुवास ना करा, फिर मैं संभल भुक भरी, फिर मैं हर एक आने वाले सुवास दे नाल जपा सतनाम श्री। जे जाना तिल थोड़े बोलो, जे जाना तिल फिर बोलो एक बार, जे जाना तिल ता संभल बुक भरी, बुक भर भर के जितना मैं सुवास गुवाई जा रहा है, जरा क टाइम मिलता कहना मैं सौ जावा, रात नू 8 बजे दा सुता, सवेर दे 8 बजे तक, ते गुरमुख प्यारे रात नू सुते पिया सुवास ज्यादा खराब हुंदे ने। महापुरुष बाबा प्रीतम सिंह जी राड़े वाले महापुरुष हुंदे सी, उन्हें कदी किसी दा बच्चा सुता होना ते तरले पाउणे मां अगे जाके, मेरे हाथ जोड़े ही नहीं सुवाणीए, अपने बच्चे नू बहुता सौण ना दिया कर। ते मैं पुछना कई बार, बाबा जी बच्चा सुता होवे सगो आराम करदा है, कहिंदे परमजीत सिंह जदों बच्चा सौंदा है इहदे दूणे सुवास खराब हुंदे ने, ते आपां की करदे आ, जे बच्चे दे हुंदे साडे वी हुंदे होणगे, आपां वस वाद किस कोबत करदे आ कि जदों साडा टाइम लगे उदों की करिए, सौ जाइए। सतगुरु कहिंदे ने ना इस तरह ना करो, जे तुहानूं पता लग जाए कि जीवन दे सुवास बड़े कीमती ने, बिरथा कोई ना जाए, जे आवे तो दे आए, दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए, दम दम नाल जो दम चेतना आवेई सो दम बिरथा जाए। एक करार करिए, एदी कीमत पाइए, एदी कदर करिए अपने सुवास दी। अज जदों साईं गुरु नानक पातशाह कह रहे ना एक बार आखो सतनाम श्री, फिर एक बार आखो सतनाम श्री। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के मालिक जदों पटने गए ना पटने, ते इत्थे सतगुरु गुरु नानक पातशाह नूं मरदाना कहिंदा मैनूं भुख लगी, प्यार नाल एक बार फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहण लगे, एक लाल दिता सतगुरु ने, आख्या जा दुकान दे उत्ते वेचिया ते इहदी कीमत पवा के आ। पहलों लैके गया किते चीनी वाली दुकान दे उत्ते, उन्होंने आख्या एक पाइया चीनी दे दांगे, ते मरदाने ने आख्या एडा महंगा ला लिया, घट कीमत पाई, थोड़ी होर पा। उन्हें कहा अद्धा किलो दे दांगे, उन्हें कहा होर पा, उन्हें कहा इतों वध नहीं। ए तो बाद चले गया किसी कपड़े वाली दुकान ते, उन्हें कहा एक सूट का कपड़ा लै जा, क्योंकि उन्होंने लाल दी पछाण नहीं सी, कीमत का नहीं सी पता। किसी ने दो गज कपड़ा ओदी कीमत पाई, किसी ने गुरमुख प्यारियो ओदी दो चीनी दी दो पाइया चीनी दी कीमत पाई, किसी ने अद्धा किलो आटा कीमत पाई, मगर फिर ए लाल लैके सालसराय जौहरी दी दुकान ते चले गया। जदों सालसराय जौहरी दी दुकान ते जाके ए लाल विखाया, ते उहने पहलों ते लाल नूं मत्था टेकिया, आखो सतनाम श्री, ते फिर 101 रुपया मत्था टेक के कहण लगा ए लाल दे दर्शनां दी भेटा है, मुल नहीं, ए लाल दे दर्शन दी भेटा लै जा, ते मैं इहदा मुल नहीं दे सकदा, मैं लाल खरीद नहीं सकदा। जदों मुड़ आया गुरु नानक पातशाह दे कोल, ते 101 रुपया लिया के मरदाने ने रखिया, ते आख्या लाल नहीं दे के आया। कहण लगा महाराज पातशाह, उन्हें आख्या लाल दी कोई कीमत नहीं, ए लाल बहुत कीमती है, मेरे वर्गे कई दुकानदार मिलके भी ए लाल नहीं लै सकदे, ए बड़ा सत्ता पातशाहियां दी कीमत दा एक लाल दस्सिया। आ अमेरिका जिड़ा देश है ना, एडे एडे 7 देशां नूं वेच दियो किसे अगे, ते जिन्नी दौलत बनदी एक लाल दी कीमत लिखिया इस तरह बनदी जनसाखी विच, 7 पातशाहियां वेच दईए एक लाल दी कीमत बनदी आ। ते सालसराय ने आख्या महाराज मैं ए भेटा दित्ती आ, मत्था टेकिया वा, मैं मुल नहीं लिया। ते मरदाने ने जदों ए गल आखी जाके गुरु नानक पातशाह नूं, ते फिर सतगुरु दे कोल जदों सालसराय जौहरी आया, ते महाराज पातशाह नूं महाराज कहण लगे सालसराय ए तू 101 रुपया दिता लाल नहीं रखिया, महाराज इस लाल दी कीमत बहुत आ, ते मेरे कोल एडी भेटा नहीं, मैं ते मत्था टेकिया वा। ते धन गुरु नानक पातशाह ने जेडे ओनू वचन कहा सी ना जन्म साखी दे विच, आखो सतनाम श्री, सतगुरु पातशाह कहण लगे सालसराय ए ते इक पत्थर दा टोटा है, जेदी तू इनी कीमत पाउनी दसदा है, एक पत्थर दा है, एदे तो भी एक कीमती लाल है तेरे कोल, जे संभाल सके ते संभाल, एक बार गाओ जरा अपने

एक मिनट ली शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नू, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं के संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उस तरह वर्त रखदे आ, उस तरह श्राद्ध करवाउने आ, उस तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उस तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उस तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

वो पूर्ण पुरख विधाता है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पिता जी जेडे तुहाडे पिता जी मेरे पिता जी ने ना सारिया दे अपने पिता जी कौन ने धन गुरु जिदन अमृत छकाया से की आखिया सी अज तो तुहाडे पिता जी कौन ने धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। एक घर विच लेटे पैसा गुरसिख प्यारे पंज प्यारे साहबान नाल अमृत छका के आए ते कोई बचन करदा सी इधर उधर दे विच तीसरा बंदा जेड़ा विच सुत्ता सी ते उस कमरे दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहब की एक ऐसी तस्वीर लगी सी तुसीं भी कई बार वेखी हो। सतगुरु ने हाथ विच कागज फड़िया है ते मोर दे खंभ नाल कुछ लिख रहे ने। तस्वीर वेखी होगी गुरु गोबिंद सिंह साहब की नवी छपी दीवार दे उत्ते। एक जाना कहिंदा भाई गुरमुखा प्यारिया इधर उधर दीआं गल्लां ना कर वेख ला लिख रहा ई एक एक गल साडी लिख रहा ई। ते दूसरा बंदगी दे विच रत्या कहिंदा कीवता लिख रहा के लिखे ही जेड़े पिछले उन्हां दे कांडे मार रहा ध्यान दिओ जेड़े पिछे लिखे सी उन्हां दे उत्ते कांटे मार रहा है कि लै गुरमुखा प्यारिया तू सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दा अमृत संचार करा के इनिया रूहां नूं गुरु दे नाल चढ़ा के आयो जे कोई पिछला कुकर्म माड़ा होया भी आ ते पूर्ण पुरख विधाता विधाता हुंदा लेख लिखण वाला वह आपे ही लिख सकदा वा ते आपे ही मेट सकदा है। आ हुण जिदन मैं आया ना एले तो ते एक मेरे तो अगे खलोता सी इमीग्रेशन दे अगे वह चैकिंग करदे ने अजकल जेडे विजिटर वीजे दे आउंदे उहनां नूं ओ इंट्री देन वाले ने गुरमुख प्यारे पहलो ओनू एक महीने की इंट्री दी बड़ा हौसला बजा इस वचन दे विचों आखो सतनाम श्री वाहे। नहीं तो कई बार सोचते हैं हाँ भी जो परमेश्वर ने लिख दिता एक बार ओनू मिटिया नहीं जा सकता मगर इस वचन ने एक नवा अंदर बीज पैदा किया जदों उन्हें इंट्री एक महीने की ला के काला जिहड़ा बैठा सी इमीग्रेशन अफसर उत्ते अपने सैन कर भी दिते ते फिर दोबारा ओनू पुछदा तू किन्ना चिर रहना है ध्यान दियो तू इत्थे किन्ना चिर रहना है एकाग्रता बख्श समझ आ रही ना ते उन्हें आख्या जी मैं जुलाई तक रहना है। अपने हथी मोहर लाई आपे लिखिया आपे उस मोहर नू कट के अपने सैना नू कट के ते जुलाई तक करके ते उत्ते सैन कर दिते। मैं आख्या वाह तू ते हाली किसी का नौकर है ते तू अपने लिखे नू कट के उत्ते सैन करके एक दे चार कर सकदा वा ते जिहड़ा आप मालिक आ सृष्टी दा ओ जो मर्जी लिख सकदा ते जो मर्जी मेड सकदा है नवे लेख लिख सकदा है। इस करके एक बार आखो पूर्ण पुरख विधाता पूर्ण पुरख विधाता पूर्ण एक बार नीले दे घोड़े दे उत्ते सवा सत फुट उच्चा कद चिट्टी हीरिया नाल मड़ी कलगी हाथ उत्ते चिट्टा बाज नीला बाणा चिट्टा दस्तारा ते मेरे सतगुरु का पावन स्वरूप अपने नेत्रां विच कल्पत करके गुर

कुर्बानी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा।

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी जे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो तां आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उदा सुभा नू इन्हें जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उन्हां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणा दियां मालक ने ते आपा इस करके गुरमुख प्यारो मेरे सतगुरु दे चरणा विच बेनती करनी आ कि आपा नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वा मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वो

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाह।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वड्याई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

0: हाथ जोड़ो सतगुरु दे चरणा च तरला पाओ, सतगुरु ए जलदे बलदे संसार चो अपना ओट आसरा दे के बचाला। आओ हुण लड़ीवार जो कथा आरंभ आ, सतगुरु दी पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे मुबारक बचन आप जी सरवण करने। पहलो आप जी नूं पुछ लवां घरां दे विच की बोलना है जी, सारे दस्यो की बोलना है। किते इस तरह ना होवे कि जिस तरह तोतियां दी डार नूं किसे ने एक तोता किसे रख लिया ते उहनूं महारनी पका ली वी तोतिया पोस्त नहीं खाणा, ध्यान दिओ तोतिया पोस्त नहीं खाणा। एक दिन उह तोतियां दी डार विच उड के रल गया, सारिआं नूं महारनी पकाती तोतिया पोस्त नहीं खाणा, ते सारे ही तोते उडदे उडदे जाके एक पोस्त दे खेत विच बह गए, ते सारिआं ने चुंझां भरियां पोस्त खाई जांदे ने, ते जेदी चुंज खाली होई जांदी उह आखी जांदा वा तोतिया पोस्त ना खाई मर्जी दा है, नाले खाई जांदे ने गुरमुखो, नाले अंग्रेजी ना किते न्याणिआं नाल बोली जायो ते नाले आखी जायो पंजाबी बोलनी, इस तरह दा नहीं। बार भुलो जिथे तुहाडा नहीं सरदा, मगर अपनी औलाद दे कन्नां विच इह छैत वर्गी मिठी गुरमुखी पाओ, घर विच पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखणी बच्चिआं नूं सिखाओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी नाल जोड़ो। आओ हुण बाबा फरीद जी दी रसना तों मुबारक वचन सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, फरीदा मैं भुलावा पगदा मत मैली होए जाए।
0: बस इस गल उते असी अटक गए सारे, आखो सतनाम श्री
1: वाहिगुरु।
0: इथे आण के कई बार मत्था टेकन लगे भी सोचीदा मत्था थले ना लाइए पग ना मैली हो जाए, किते भाई गुरदास जी नूं पढ़ के वेखो होए नमाणा टह पवे, होए नमाणा इथे जदों आवे ना। ते मैं एक बार आप जी नूं बहुत बार बेनती कीती, क्योंकि दो तीन साल तो आप जी दे जोड़े झाड़दिआं समा हो गया है, दास ने कई बार बेनती कीती सज्जणो जे नवा घर बनाउणा होवे ना नवा घर ते पहले घर नूं की करना पैंदा है, की जी सोचो ढाउणा पैंदा है, जे पहला ढवे ना ते उत्ते नवा कितना बनू। जिहड़ा परमजीत सिंह हंकार ना भरिया वा गुरमुखो प्यारे हो, जे गुरु दे अगे आण के टह ना पिया ते गुरमुखां वाला जीवन गुरु कितना बख्शू। पहलो हंकार रूपी महल नूं ढाउणा है इत्थे आण के, पहलो टह पवां। एक थां गुरु अमरदास महाराज पातशाह ते मालक ने संसार दे सृष्टि दे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बण आवे, किते पता नहीं किन्ने रंग विच रत्ती गई होगी अंदर आत्मा रब्बी रंग विच जदों कह रही होगी होए।

0: देखो कितने प्यारे चक्कर, खंड, निवात, गोड़, अगे माखियो, माझा, दुध, ये सारिया चीजा आपां किसे ना किसे समय चख के वेखियां। शक्कर खा के वेखी, खंड खा के वेखी, निवात दा मतलब मिश्री खा के वेखी, माखियो दा शहद खा के वेखिया, माझा दुध पी के वेखिया। मेरे सतगुरु ने सारिया चीजा का नां लैके जिन्हां ने चखिया उन्हां नूं इस गल का पता लगा। आखो सतनाम श्री। ये गल उन्हां ने आखे अलौती का जैसे पया बरेडा, बोलो अलौती का जैसे पया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया, जिन पिया तिन जानिया। बाबा कबीर कहिंदा है गर्मी होवे ठंडा पानी होवे ते मिश्री दा बनिया होवे शरबत मिश्री दा, अलौती का जैसे भया बरेडा, मिश्री दा शरबत होवे एडा सरबलो दा कौला भरिया, ते फिर जिन पिया तिन जानिया। ये ते जिन्हें पीता है ओनू पता ना फिर मिश्री दा शरबत किन्ना आनंद देई। इथे भी बाबे फरीद ने जो उस परम पिता परमेश्वर की बंदगी का रस चख लिया, ओदी मिठास वेख ली, ते हुण कहिंदा नहीं शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध, ये सारिया चीजा हे वाहगुरु बड़िया मिठिया ने खा के वेखिया ने। हां जी अगे जी।
1: सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद,
0: बड़ा प्यारा बचनिया साहब जी कहिंदे ने सबे वस्तु मिठिया। इथे खिलारो एक बार सारे आखो सबे वस्तु जिको आप कहने ए ते गल ठीक है, ए ते गल पर अगे ना पर आ भी ते गल है, आ गल जेड़ी है होर आनंद दी आ। इथे भी मेरे सतगुरु कहिंदे ने इहदे विच कोई शक नहीं कि शक्कर मिठी नहीं, इहदे विच कोई शक नहीं कि खंड मिठी नहीं, इहदे विच कोई शक नहीं कि किते शहद जेड़ा वा माखियो दा ओह किन्ना मिठा है, इहदे विच कोई शक नहीं कि माझा दुध किड्डा प्यारा है। एक बार भाई नंद लाल साहब नूं किसी गुरसिख प्यारे ने पूछ लिया कि तेरे सतगुरु गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने जदों मुंह दे विचों बोलदे ने उन्हां दा एक एक बचन किन्ना क मिठा है। आखो सतनाम श्री। जरा गज के आखो समा हो चलिया है, मेरा गुरु नानक तुहाडियां झोलियां भर के घरां नूं भेजे। आखो सतनाम श्री। जन्मां दे भुखे आयो गुरु नवाज दवे, आखो सतनाम श्री। तेरा सतगुरु जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब बोलदा वा किन्नी क मिठास आ। ते भाई नंद लाल साहब ने छेती नाल आखिया जिन्नी एक खंड दी बोरी मिठी, शक्कर दी बोरी मिठी। ते फिर छेती नाल कहिंदे नहीं नहीं मैं गलत कह बैठा, मैनू माफ करियो मैं गलत कह बैठा। उन्हें कहा दस फिर किन्ना क मिठी है, उन्हें फिर एक बोरी दो बोरियां करदे करदे कहिंदे ने आ दो जहान लोक ते परलोक शक्कर दे बन जाण, लोक ते परलोक शक्कर ही हो जाए। ते जिन्नी ओदी मिठास आ ओ मिठास मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे एक बजन दे बराबर नहीं। मेरा गुरु इना मिठ बोलड़ा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी ओ मिठ बोलड़ा इना मिठा है। ते साहब जी कहिंदे ने ए सारियां वस्तु मिठियां ने सबे वस्तु मिठियां, मगर रब ना पुजन तुद। मैं शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध दी सारी मिठास एक पासे पाके वेखिया, मगर एक पासे हे अकाल पुरख तेरी मिठी बाणी पाके वेखिया, तेरा मिठा सुभा पाके वेखिया है, मगर तेरे मिठे सुभा दे बराबर ए मिठास नहीं पुजदी। सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद। हां जी।

0: देखत साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडे वल झाती मार एक चिट्ठियां लिखियां ने मिशनरी कॉलेज वालियां चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईयां चिट्ठियां लिख उन्हां दे विच दोखी ते लिखे ने उन्हां दे विच एही ते लिखिया धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह दीन दुनिया दे मालक जी मैं तुहानूं आ बेनती करदी आं मैं तुहानूं आ बेनती करदी आं जीव आत्मा वालों चिट्ठियां लिखियां कदी पढ़ियो कदी चिट्ठियां लिख सतगुर वल पाईयां फिर बोलो चिट्ठियां लिख आपां वी एक बेनती करिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह दीन दुनिया दे मालक एक छोटी जी बच्ची आसन सोल पांच क साल दी बच्ची सवा क लख दा इकट्ठ संगत गुरु नानक दे पुरब ते जुड़ी जो बिहारी जो बंगाली जो सिख उस इलाके का ट्रकों वाला बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उधर रहिंदे ने टाटा नगर आसनसोल हजारी बाग ए शहर बड़े सारी संगत वाल हाथ जोड़ के कहिंदी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारी संगत वाल उंगला मार मार के कहिंदी ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक है नीला घोड़ा ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक की है बोलो नीला घोड़ा ते ओ बची सारी संगत वाल हाथ करके कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा च हाथ जोड़ दी नीले नू कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा विच हाथ जोड़ दी एक बार मुड़ के आ एक बार मुड़ के आ ते अपने सवार नू उत्ते बाल के लिया ते मैं तेरी लगाम फड़ लू पांच साल की बची कह रही मैं तेरी लगाम फड़ लूंगी ते मैं एक एक सिख दे घर विच तेरे सवार नू लैके जाऊंगी ते जदों घर दे विच बच्चियां दे कट्टे केस दाड़ियां कट्टियां शराबां दियां बोतलां मांस पिया विखाऊंगी ते मैं आखूंगी नीले दे शाह सवारा इन्हां लई पुत वार के गया है इन्हां नी मां वारी सी इन्हां लई प्यो वारिया सी आ वेख तेरा सारा पंथ अज तेरे तो बेमुख हुंदा जांदा ही मेरा कहण दा मतलब है तुसी भी एक बार बापू नू कहो तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडा जीवन हो गया चिंता दी मंजे ते सुते ही दुखां दा वाण ही चिंत खटोला वाण दुख बिरहे विछावण लेव तलाई विछोड़े दी विछियु इस तरह के मंजे ते असी जीवन बतीत कर रही विछोड़े दे विच सड़ रही तेरे दे विच अगला वचन सरवण करो जी
1: बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान
0: बड़े सुंदर वचन किते ने बाबे ने हुण समाप्ति करांगे एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री बाबा कहिंदा दुनिया कहिंदी विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा बड़ा माड़ा आपां कहिंदे ना विछोड़ा बड़ा माड़ा है एक थां ते लिखिया गुरबाणी दे विछोड़ा सुने दुख विछोड़ा विछोड़ा एक एहो जिहा शब्द है जिहदा नां लिया ही दुख हुंदा है मगर इत्थे बाबा फरीद जी बड़े प्यार दे वचन विच कहिंदे बिरहा बिरहा आखिए लोकी कहिंदे विछोड़ा विछोड़ा मगर बिरहा तू सुल्तान तू ते बादशाह है बिरहा तू ते पातशाह है केड़ी गल्लो जी हां जी
1: फरीदा जित तन बिरहो ना उपजे
0: हाय हाय हाय
1: सो तन जान मसान
0: कहिंदे जेदे विच हिरदे विच ए विछोड़ा ही नहीं जेदे अंदर विछोड़ा पैदा ही नहीं होया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे जिन्हें कदी ये क्या ही नहीं जन्म जन्म

गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै।

ਸੱਜਣਾ जे तू मेरे करण कादर पिता दे मेनू दीदार करा दे सिर धरी उतारे सिर धरी उतारे सिर गज के प्यारे सिर उतार के रखना बड़ा औखा है बोलते दियो किसे नंद जान के सिर

वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वे तो बिना उदास हो गई है, सिर देने नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे प्रिया रंग रंगारे, मेरिया अखा ओदे रंग विच रतियां गई ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, 24 घंटे गाउंदिया ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी बाहों तरला तुसी भी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी।

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी वो दी सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चौर हो सकता है होर किसे ते चौर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे हो इहदी फोटो दे उत्ते उन्हें चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो भुआ के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे हो बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बलाव हो ज्यों बलाव हो त्यों नानक दास बोले ज्यों बलाव हो ज्यों बलाव हो त्यों नानक दास बोले तुमरी गात मेत तुम ही जानी

0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु
1: नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक
0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
0: सिद्ध कहिंदे ने असी सारी मंडली ने तुहानू धन कहा, हरिद्वार दे पांड्या ने तुहानू धन कहा, जगन्नाथपुरी आलिया तुहानू धन कहा, मुल्तान दे पीर तेरे चरणा ते डिग पए, मक्के मदीने वाले गढ़ बगदाद वाले तेरे चरणा ते डिग पए। आखिर राज की ध्यान दे, आखिर राज की शक्ति की। धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने सिद्धो खोजत खोजत अमृत पिया, बोलो खोजत खोजत लभदिया लभदिया ओ चीज लभ गई जिदे नाल फिर सारे मसले हल हो जांदे ने। खोजत खोजत अमृत पिया, अमृत पीता मैं जिदे करके जय जयकारा हो गई, जिदे करके जय जयकार हो गई। हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, मन तन विच परमेश्वर वस गया। ते फिर सिद्धा ने अगला सवाल किया, ए जिहड़ा अमृत आ बड़ा कीमती आ? साहिब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां बहुत कीमती आ। आखिया फिर दिता की कीमत की दिती दे? ते बड़े प्यारे बचन गुरु नानक साहब ने जो उथे बोले, बड़े प्यार दे बचन ने, कहिंदे खिमा गई मन सतगुर दिया। अमृत नहीं उतरा मिलदा जिन्ना चिर मन नहीं अपने गुरु दे अगे अर्पण करना पैंदा, जिन्ना चिर मन नहीं जीव आत्मा वेच देंदा। आ लोकी बहुते कहिंदे मेरा मन नहीं करदा, मेरा मन नहीं मन्या, मेरे मन दी अजे परपक्ता नहीं होई। गुरमुख प्यारे हो, ए ते रोगी होए नू, एनू कोड़े होए नू, एनू विगड़े होए नू, मन बे

से जुड़ के जुड़ के साहब गुरु नानक पातशाह कहणगे सौदा कर लिया परमेश्वर दे नाल, उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं अपना मन वेच दिता है ते आख्या जी दिता है ते कुछ लईदा भी आ, कोई चीज दईए ते उहदे बराबर लईदी। मेरे साहब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां सिद्धों मैं लिया है। कहिंदे की लिया है? कहिंदे मन दिता वा ते खिमा लै ली, खिमा निम्रता लै ली उहदे कोलों, नीवा पन लै लिया उहदे कोलों, निम्रता लै ली, झोलियां भर लिया मन दे के। अज जदों मैं कई बार पढ़दे आ ना, तुसीं भी पढ़दे ते मैं भी पढ़दा सिखां दा रोज पढ़दे हो, मन नीवा ते मत उची। इतना हो गया जी, उल्टी गल चल गई, हुण मन हुण उच्चा हो गया ते मत इतना नहीं लगदा। ध्यान दिओ अपने अंदर झाती मार के वेखो, मन करके ते असीं कोठे ते चढ़े आ, मन करके ते साडे वर्गा है ही कोई नहीं। मन दे विच ते जिन्नू भी वेखदे कहिंदे छड्ड इहदे वर्गा, मैं इहदे नालों चंगा। मन दे विच, मन करके आपां रोज कहिंदे अरदास विच कि हे सतगुरु सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची होवे। मगर कितना दी ए गल हो गई साडे नाल वापर गई, असी मन करके हंकारी बन गए, मत करके नीवे हो गए, मत इन्नी नीवी हो गई आ भरा नूं भरा वेख के राजी नहीं। सिख सिख दा की आ, बोलो जी की आ? जे गुरु गोबिंद सिंह साडा प्यो आ ते सिख दा सिख की लगदा है? इहदे नालों दूसरे भरा ते कदी धोखा दे देणगे? दूसरे भरा नूं ते असीं मन्निया है ना कि यह मेरा भरा है, मन करके मन्निया ना। यह ते गुरु ने मोहर कला के दिता कि एक पिता ते तू मेरा गुर हाई, एक प्यो दी औलाद आ, जिन्हें जिन्हें बाटे चो अमृत पीता वा। कमाल दी गल आ, उहदे प्यो दा नाम गुरु गोबिंद सिंह आ, माता साहिब कौर आ, उसे प्यो दा पुत, उसे मां दा पुत, एक दूसरे दा वैरी बनिया। कदी रहत मर्यादा पढ़ के वेखो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं बाहर ना चले जावा, सारे मात्र आप जी नूं कहूंगा जो सिख सिख दी चुगली करे, बोलो जो सिख सिख दी सो तनखाइया, सो तनखाइये दा मतलब हुंदा है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च जिस तरह गुरमुख प्यारे चौर कर रहे ने, तनखाइये नूं कोई हक नहीं गुरु दी हजूरी च चौर करे। ध्यान दिओ, जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करे, जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करके काज विगाड़े, ओह कड़ा प्रसाद नहीं विगा सकदा, प्रचार सकदा, ओह तनखाइये। जिहड़ा सिख सिख दे दाड़े विच हथ पावे सो तनखाइये, जिहड़ा सिख सिख दा मूंह खड़ावे सो तनखाइये। मगर आपां अपने शीशे विच किते झात के वेखीए फिर असी सारे ही तनखाइए, इतना लगदा वा हे मेरे सतगुरु। कदी कहना पौगा हाथ जोड़ के हम बारक मुगद आण, हम बारक मुग

मूरख मुगदा जन्म भया, परणवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाही विसरिया। परणवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाही विसरिया। परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक, जुगह जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, संध्या वेले दे दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है। अमृत बचना दा कीर्तन सतगुरु जी दे बख्शे हुए नित नेम सोदर रह राज साहिब जी दा जाप आप जी ने सरवण कीता। आओ मेरे साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी महाराज, जिन्ना ने वैसाखी दे पुरब ते अमृत दी दात दे के और आप अमृत पान कर गुर चेले दी उस रीत नू दृढ़ कराया। आओ आपां अज उसे विषय दे उते आरंभता करनी है। सब तो पहला अज दे इस पावन पवित्र जो अमृत बचन आपां विचारने ने, विचार दा विशा आपां केवल सतगुरु के अमृत छकना, केवल ता केवल एक बाजमुखी रस्म नहीं। अमृत दा संबंध केवल ता केवल एक आपां सोचिए भी शायद कोई फिरका प्रस्ती जा वखरेवें दी गल, बिल्कुल नहीं। असल विच अमृत सानू आत्मक जीवन प्रदान करन दे लई, सतगुरु दे चरणा विच जुड़न दे लई दातार दी रहमत है। आओ सतगुरु जी दे अमृत बचना नू हजूर दी कृपा नाल आपां ने विचारना है। आप समूह माई भाई कृपालता करो, मनो बिरतियां नू एकागर करो। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब जी आप कृपा करन सानू कहण वालियां नू और सुनन वालियां नू अंदर दा टिकाव बख्श के विचार कहन सुन दी दात बख्श देन।